0: 信使，总抢先一步萌芽。
1: 说老话，你们活不下去，我们也活不下去。
2: और चपाल के व्यवहार जो है नहायत लैब हम इसके वो सुख मस्त खा
0: 何时下的狂歌，日夜不息雕琢山河。
3: 舞蹈现在就是生活中的一部分，